0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: यो ब्रोस
3: यो
2: ओ गांडे
3: हां
2: यू आर रेडी फॉर दिस
3: कम ऑन
2: अल्लाह ले
4: ब्रोजी